बात नहीं रहा जो झुक सकते हैं, कोई बात नहीं है जो ये बोलते हैं, जो लोग नफरत से करते हैं।